मना तुझे यार किया, अब जो हो जाए गम यही तो हम है, तेरी कसम है यही तो हम है।